संस्कार और संस्कृति की वो मान्यता सबने दूसरी सके आजकल आत्मता यति कार्पेट नै हो. विगत तीन दशकदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनुहोला. यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह.

0: Wherever you are, stay connected with the wider world. Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
1: Where do we begin?
0: With international news you can trust, BBC News.
1: Journeys into the heart of global events.
0: And voices from around the globe.
2: The whole region is in the grip of a severe water crisis. And I'm here to find out why.
0: The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
3: నాగరికత కష్ట సంచాలనూ అదనీతిగా గ్రహి మహానుభావులు యాత వ్యవస్థ కరణీబాట ప్రభావం సేవా ప్రాప్తికి సహజకరణకు నాగరిక సహాయతా కక్ష సంచాలన ఉక్త కక్షబాట ముఖ్య సేవలు ప్రాప్త సేవా ప్రాప్తికు నాగరిక సహాయతా కక్షమా సంపర్క రాఖ్ అనురోధ గరివా ప్రాప్తిమా కసీక ప్రలోభన నగరి ఆత్మ సేవా లిన హార్దిక అపిల్ గర్దేవా ప్రాప్తిమా కొన్ని గ్రాస ఆయన अधिकार कार्यालय प्रमुख संपर्क
4: कोची प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
5: सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश
6: तपाई सवारी चालक अनुमति पत्र लिन चाहनुहुन्छ भने अनलाइन फर्मको लिंकमा गएर आफ्नो विवरण भरी तयार भएको आवेदन फर्म डाउनलोड गरी तोकिएको दिन सकल कागजात सहित कार्यालयमा जानुहोस। सवारी चलाउँदा सवारी चालक अनुमति पत्र जहिले पनि आफ्नो साथमा राख्नुहोस्। सवारी चालक अनुमति पत्रको ई कपीको लागि अनिवार्य नागरिक एप प्रयोग गर्ने बानी बसालौं। नागरिक एपमा भएको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई ट्राफिक प्रहरीबाट पनि मान्यता प्राप्त भएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र 5 वर्षका लागि बहाल रहन्छ। याद सकिएको 90 दिनभित्र नजिकैको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर नवीकरण गर्नुहोस्। याद नागिसकेपछि ढिला गरीमा थप जरिवाना 1 वर्षमा 100% र 5 वर्षसम्म 500% लाग्न सक्छ। 5 वर्ष नागेपछि सवारी चालक अनुमति पत्र स्वत रद्द हुनेछ। चालकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसारका तर्कहरू पालना नगरेमा सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बन 6 महिनासम्म हुन सक्छ। सवारी चालक अनुमति पत्र हराइमा वा नष्ट भएमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिश समेतमा आधारमा प्रतिलिपि लिन सकिन्छ। सवारीको प्रकार थप्नु परेमा वर्ग थप एट क्याटागोरीको लागि अनलाइन फर्म भरेर तोकिएको दिन कार्यालयमा जानुहोस्। नवीकरण गर्दा सकल नागरिकता पुरानो सवारी चालक अनुमति पत्र रसिद आवश्यक पर्दछ। सवारी चालक अनुमति पत्र हुनु भएको जिम्मेवार हुनु हो। ट्राफिक नियम सड़क चिन्ह र गति सीमाको अनिवार्य पालना गरी सुरक्षित यात्रा गर्नुहोस्। ई रिक्सा सम्बन्धी तपाई ई रिक्साको लिखित परीक्षा दिन चाहनुहुन्छ भने अनलाइन फर्म हुँदा ई रिक्साको सीमा छनौट गरी स्वयं परीक्षा मात्र दिएर सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सक्नुहुन्छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको 2082/14 अगाडि 5 वर्ष र 14/15 पछाडि नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा र सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दा 10 वर्ष अवधि कायम भएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवा लिन तपाईंलाई कसैको सहयोग आवश्यक पर्दैन। स्वयं व्यक्ति उपस्थित भई सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा लिँदा सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढ़ी रकम कसैलाई पनि नदिनुहोला। आफूले तिरेको रकमको बिल अनिवार्य लिनुहोला।
7: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश

0: टोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दूध को नगरपालिका पांच सौ

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Sound check. Studio FM. Studio time.
2: It's 10 AM. We had a good boss with it.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगर पालिका 5 सोलुकुम्बु

0: नागरिकको कर्तव्य हो।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: वन जंगल को छेउमा घर आँगन।

0: বালবালিকালে লাঘু ঔষধ দুৰুপয় কৰিব চাওঁ। লাঘু ঔষধ সামাজিক অপৰাধ হ কোহী কসৈলে প্ৰয়োগ নগৰ। বাল বালিকালৈ লাঘু ঔষধৰ প্ৰয়োগবাট টাড়া ৰাখো। বাল বালিকাক সংগতমা ধ্যান দিওঁ। লাঘু ঔষধবাট হুনে হানি ৰ কানুনী পৰিণাম বাৰেমা জানকাৰী দিওঁ। বাল বালিকাসঙ্গ নিয়মিত সংবাদ গৰ্নে গৰং। বাল বালিকালৈ ঘৰমা মায়া ৰ সময় দিনে গৰং। বিদ্যালয়মা জীৱন উপযোগী শিক্ষা দিনে গৰং। বাল বালিকাক সকাৰাত্মক গতিবিধিলৈ প্ৰোৎসাহন গৰং।
1: আন্তৰিক মামিলা তথা কানুন মন্ত্ৰালয় কুচি প্ৰদীপ দ্বাৰা জনহিতমা সারি সন্দেশ।
0: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं। मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिनेर दिने गरौं। मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं। प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ। जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं। वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ। ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ। वातावरण संरक्षण गरौं, जीवन रक्षा गरौं।
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: कर प्रिन्ट मुजुकरको रकम र कवारी साधनको नम्बर एकिन गर्ने सम्बन्धी सूचना। आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरू, तपाईँले आफ्नो सवारी साधनको वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने सवारी कर, नवीकरण वस्तु र लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेर्नका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर कर प्रिन्ट माग्न, बैंक भोचर गर्न, अघि सवारी कर तथा वस्तु एकिन गर्न तथा कर बुझाएपछि प्राप्त हुने बिमा आफ्नो बुझाएको करको रकम र आफ्नो सवारी नम्बर एकिन गर्नु हुन यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
1: कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रबंधन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राखने अनुरोध सेवा प्राप्ति में कठिन को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आईमा गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख सीधे संपर्क राखने कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराजमान आर्थिक वर्ष 2084-84 का प्रदेश संचालन करोजना कार्यक्रम को प्रस्ताव आवेदन संबंध में कृषि प्रदेश योजना आयोग
1: आयोजना को वर्गीकरण आधार तथा मापदंड निर्धारण और आयोजना वन व्यवस्थापन कार्यवाही 2082 बंदुकी स्थानीय तह प्रदेश कार्यालय आर्थिक वर्ष 2084-84 में कार्यान्वयन होने आयोजना कार्यक्रम के संबंध में इस आयोग मिति 2082 साल चैत्र 9 गति आयोजना वन सूचना प्रणाली मार्फत प्रस्ताव आह्वान भएको हुनाले 2084 साल वैशाख 5 गति घटना प्रणाली को प्रयोग मार्फत आयोजना प्रस्ताव गर्ने हुँदा कृषि प्रदेश सरकार मार्फतका कार्यालय स्थानीय तहहरूलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। साथै आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा स्थानीय नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तह र संस्थाको कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तह तथा आयोजनाको सम्बन्ध कार्यक्षेत्रमा रहेको प्रवेश कार्यालयमा सम्पर्क राखिनु अनुरोध गरिन्छ। प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विस्तृत आयोग वेबसाइट ppc.cc.gov.np हेर्न सबैमा यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
0: कोशी प्रदेश सरकार प्रदेश योजना आयोग विराट नगर नेपाल नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रबंधन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राखने अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कठिन को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आईमा अधिकार कार्यालय प्रमुख शर्मा सीधे संपर्क राखने सकने
2: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय

0: कुमु बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह प्रथम वर्ष को वर्ना संबंधी सूचना।
1: विगत 34 वर्षदेखि योग्य दक्ष अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा शिक्षण र व्यवस्थापन

0: ইচ্ছুচান সুমন রায় প্রমুখ প্রশাসকের অধিকৃত নাকুন গাওপালিকা এবং সেলুখুম্বু দিদি আজ বহিনের সুমনলে কি ভাগো ছিটো গর্দিন আমন্য এক্লে বসন রুচাউনুহুন্ছ দুপাউদ্দ পনি জানু ভাগো ছ পহিলা খুব পড়ে হুনুহুন্ছ অহিলে কিতাবই হেরে মানুহুন্ন মেয়ে পহিলা তো তেস্তো মানছে হুনে কি ভয়েছ ত দুঃখ গরের কমাকো পয়সা ব্যাঙ্কমা অলিলি জমা গর্দৈ থিউ অস্তি ঘরকো লাগি কেই সামানহরু কিন্নু পর্যো ভনের নিকাল্নু গপো পয়সা নে ছৈন সানো সানো কুরানো কিছকিছ মাত্রে গর্নুহুন্ছ ঘরবারে বিগ্রিনে জস্তো পো হয়ে সকো মেয়মা দিদি সম্বল দিনু পড়ো ये तो मागू से प्रो कोटा में दूसरी जिसकी लक्ष्य था कोटे से मागू से तो भाई की भाई को तीन लाइक मुझे की बना तो
1: खाई दीदी की हुई ना साथ ही वे गांव का खाना जबरदस्ती करे मेरे को नहीं मन नहीं सकी ना रखा है तेज पर से विस्तार में बारी मुझे गए और ये तो लौट लगी था छाप नहीं सकी ना और ये पर गार हो रहा था
0: गार सारे मलाई किसी था सी ना अब खुद को इस अब तो छानो बसो तीनों तो हम लोग सहारे हो क्यों इसे रे बंदा जाने काम कर दी छो समझे तो हम लोग आम बियाली समाज से बनाए में बोल पीछे प्रतिष्ठा छुट्टी सा इसको संरक्षण तीनों तंग हुआ
1: मुझे दीदी धन्यवाद अब मैं सभी सहारे हो एक असल नागरिक बनने प्रयास करने से मेरे सेवक के पनी धीरे ही दुख दिए किसी ने मेरे सभी ने ठीक परिवार हो मैं माफ करें मैं सुधरने में कामयाब नहीं
0: बारिश का लॉस चीजें डगरी दुबई से तिलांगी वस्तु या पदार्थ नागु पदार्थ वा नागु सत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नागु पदार्थ लाई स्वस्थ शरीर को लागी प्रयोग गर्द आवश्यक नभए को पदार्थ परिभाषित कर यस्ता पदार्थ ने बारिश को पूर्वीय स्थायी प्रणाली में प्रभाव पारने का साथ ही उसको भावना और सुचाई में परिवर्तन ल्याद तेसैले नागु औषधको प्रयोग प्रसार प्रसार रोकथाम र नियन्त्रणमा जोड दिनु स्वस्थ जीवन कर्तव्य सदैव दीर्घाधमा हाती बालो नागु औषध विकास सदैव दीर्घाटका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुलुखु र सुलु एसिडको सेवित प्रयासमा जीवहितमा जोड सक्छ नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना अदालत वा गृह महानुभावहरू यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदानहरू सेवा प्राप्तिको सहजीकरणको लागि नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ उक्त कक्षबाट निशुल्क सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सेवा प्राप्तिको लागि नागरिक सहायता कक्षमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ सेवा प्राप्तिमा कसैको प्रलोभन नगरी आफू सेवा लिन हार्दिक अपील गर्दछ सेवा प्राप्तिमा कुनै गुनासो भएमा हुनासो सुन्ने अधिकार कार्यालय प्रमुख शर्मा सोझो सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विराटनगर यौन हिंसाबाट बचाउ र बचाउ यौनसन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो बालबालिका यौनसन्य हिंसाको जोखिममा हुन सक्छन् हिंसा छिमेकी आफन्त साथीभाइ परिचित नातेदार र जोसुकीबाट हुन सक्छ अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौ बालबालिकाको चालचलन पानी व्यवहार अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ त्यस्तो पाइने उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं बालबालिकासँग नियमित सम्पर्क गरौं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत गरौं जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं वन संरक्षण वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा वर्षस्व स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरौं वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण गरौं जीवन रक्षा गरौं
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
0: सड़क प्रयोग गर्दा ध्यान दिउ सड़क सीमा अतिक्रमण नगरौं सड़क सीमामा अस्थायी एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरौं सड़कको नाली थल तथा पानी निकास बन्द हुन नदिउ सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गरौं सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौं सवारी साधनमा झुन्डिएर वा छतमा बसेर यात्रा नगरौं सड़कको क्षमता भन्दा बढ़ी भार प्रयोग नगरौं जेब्रा क्रसिङबाट मात्रै बाटो काट्ने गरौं सड़कको तत्काल मर्मसुमार गर्ने गरौं यात्राको क्रममा कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गरौं
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश

Sedesa, Jutusan, Madura Labu also disebut merasakan asis sedesa, pariwari kalaha, Dirga Dekri Sikar, Dendoko Sokol Tali, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, Mungkus Nahulu, समस्या अनुसार को मनोचिकित्सा का विचार साइको थेरापी को माध्यम बाट जीवन में उत्साह भूमि के साथ ही आवश्यक औषधि खोल सके आत्महत्या रोक सके समस्या को समाधान होना सुंदर जीवन हासिल अस्ट्रेलियन एज र अस्ट्रेलियन हिमालयन फाउंडेशन का संलग्न रिपोर्ट द्वारा जनजीवन जारी

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम
2: चेक को साथ में तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुमा नगर पालिक 5 सो

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साथमा
2: डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्पिन नगरपालिका 5 चौकुम्बु

भगवान से समाचार समुद्री आदि टाइफून डल्फिन चीन को पूर्वी तटतर्फ अघि बढ़े वहां को त्यहां को प्रशासन ने विद्यालय तथा पर्यटक स्थल बंद कर समाचार संस्था एपी के अनुसार आदि को अधिकतम निरंतर हावा को गति झंडे 162 किलोमीटर प्रति घंटा पुग्ने अनुमान आदिसंग अत्याधिक वर्षा होने इसट बाढ़ी तथा पहरो को जोखिम बढ़ने चीन को मौसम विभाग ने जनाये टाइफून होने रात झोजियांग प्रांत तथा सुमेकी फुजियान प्रांत उत्तरी क्षेत्र में पुग्ने अनुमान चीन को प्रमुख आर्थिक शहर सांझाई पनी आदि को संभावित मार्ग रहेको छ। टाइफून को जोखिम ध्यान में राख्ते झोजियांग प्रांत प्रशासन ने तेस्रो तह का आपतकालीन प्रतिक्रिया घोषणा गरेको छ। चीन को चार तह को आपतकालीन प्रणाली में यह दोस्रो न्यून स्तर रहेको छ। झोजियांग प्रांत का सब जसो पर्यटक स्थल शनिवार र आइतबार बन्द गरिएको छ। अब खेल समाचार अमेरिकी अलराउंडर हरमीत सिंह ने नेपाल प्रीमियर लीग एमपीएल को तेस्रो संस्करण में जनकपुर बोटल्स खेलने भएका छन्। जनकपुर बोटल्स ने आफ्नो सामाजिक संचार प्लेटफर्म हरमीत अनुबन्ध गरेको जनाएको छ। जनकपुर ने एसोसिएट क्रिकेट का प्रभावशाली खिलाड़ी हरमीत कप्तानी को जिम्मेवारी पनि दिएको छ। उहाँले पहिलो दुई सीजन सुदूरपश्चिम वेल्स खेलेका थिए। यस्तै पोखरा एभेन्जर्स ने तेस्रो संस्करण को एमपीएल का लागि श्रीलंका का अनुभवी अलराउंडर पोथु थुआ अर जे धनजय लक्ष्मण लाई टोली में अनुबन्ध गरेको छ। लक्ष्मण ने दोस्रो संस्करण पोखराबाट खेलेका थिए। उहाँ पोखरा में भित्रिने दोस्रो विदेशी खिलाड़ी रहेका छन्। यसअघि पोखरा ने बंगलादेशी अलराउंडर सकिब अल असलाई टोली को अनुबन्ध गरेको थियो। तपाईको आसपासमा भएका घटना तथा गतिविधिका बारेमा हामीलाई 0385 2016 फोन वा sonifmnews@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले दिनुभएका जानकारीले हामी समाचारमा समिति प्रयास गर्नेछौ। अवश्य अहिलेलाई सुरुहाल चार सकियो। 7 बजेको शुभ समाचारमा फेरि भेट हुनेछ। सूचना शिक्षा र स्वस्थ मनोरञ्जनका लागि सोलिफी मिसिँदै रहनुहोला। नमस्कार।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाहन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकूने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख्व अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आईना गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख सोझे संपर्क राख सकू
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संचे सूर्या फिल्म स्टूडियो टाइम
2: 6 PM साँझ को 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदूत को नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु

0: का कारण आज मैं फोक्सो को कैंसर यही गलती का कारण किसी दिन में मेरे जीवन समाप्त होने
1: तीन धूमपान का कारण मेरे पहले बच्चा अपंग जन्म दोसों बच्चा भी जोगा सकें
0: मैं मुख्य घाटी को कैंसर से बांचे मैं तुम्हें मैं अलिक हिड़न सक स्वास्थ्य श्वासमें समस्या देखियो धूमपान करना छोड़ा स्वस्थ जीवन बांच।

समझ को माया में हवा चलता सोलह सत्र को उमेरना जोबन को नहर चलता कसे कसे में तू तो मीठो याद रुकर दिए के होना हुई ना हाँ ती याद रु नहीं हूँ कुछ में रुमान छा गाय।